0: 你是老了。你是老，俺大姨了。老，过去南关三街送些的呢，头里边俺是老哪了？
1: 那是老，是他的哪了？老，
0: 我们一共他们三。
1: 公公三，给了小伯子了。
0: 小伯子领床了。
1: 来，来到三家的人给了。你是老了，俺从哪里才能去南街呢？这就是为大家两个打南边，江西大王杨记是的，所以便宜呢。 老哥了，大王杨姐是不是上学的呢？他们不是把这些人给他南边，江西大王杨姐是的，所以便宜呢。老哥了，大王杨姐是不是上学的呢？他们不是把这些人给他南边，江西大王杨姐是的，所以便宜呢。老哥了，大王杨姐是不是上学的呢？他们不是把这些人给他南边，江西大王杨姐是的，所以便宜呢。老哥了，大王杨姐是不是上学的呢？他们不是把这些人给他南边，江西大王杨姐是的，所以便宜呢。老哥了，大王杨姐是不是上学的呢？他们不是把这些人给他南边，江西大王杨姐是的，所以便宜呢。老哥了，大王杨姐是不是上学的呢？他们不是把这些人给他南边，江西大王杨姐是的，所以便宜呢。老哥了，大王杨姐是不是上学的呢？他们不是把这些人给他南边，江西大王杨姐是的，所以便宜呢。老哥了，大王杨姐是不是上
0: ramdo yong da simin du shi ju yin de ne nin du ru shi we kon bo to je la da xi da zi ja da ru shi we ju zo lo san wan de la bo no kon nin da tu sam do da cha wa ramdo yong da simin du shi ju tan bo ju si ri la da nam ling ju tan du la bo no kon bo nin da tu sam do da cha wa ramdo yong da simin du shi ju tan de ne yin na sume long de san do san bo ji rin de je ru shi we se te la da ta de ru shi we ताजा के यबियों लेंगे ता जिने फमो छरिन दिजी ता पुतिवान छरिन कोंसो इंदा तो सुन दो ता छव लंदो चिमसान छम दु यों ता सिमिन दु शियो इंग ला
1: ला ला
0: अ जिने फमो ला मो पिते ते मा थामा गने सलो यों ता सिमिन दु शियो इंग के ला
1: निसे
0: ने के ला तुमे लों दे सें दो सांबो थोम रे शियो वे जो थंदु ला ता तम दिन सो ला बु जु इंग के ला
1: ला ला
0: जिने छा यी तो ने ने दे सिंगे गि पिंगे गि जो लवांग ला ता जो kudu la la bu ne fang zu yin da tu sum do da cha wa lam yu lam do yung da xin yin de xie yin ge la de sun xie zu na tu zi ye da la
1: na na chang la ge sun xie ka chi di na yin na
0: homo lung ba ji ba xie wei tung bu ni wa de bu yin ge la
1: ni se na la ki lan ge tum chi ra xipi ro na ki lan chi li na sim bo gu xiu xia la
0: la o ge la la se la